0: Hey man, this is ASAP Ferg. Shout out to YCRadio.org. You already know what it is. Peace.
1: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MAF. ए. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MAF. ए. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MAF ए अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MAF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: Ladies and gentlemen of York College, it is I, Giovanni Anglin, and I have some exciting news pertaining to YCRadio.org, the voice of today's generation. We are now featured on an app called TuneIn, that is TuneIn. And TuneIn allows you to listen to our radio show, it allows you to listen to our music, and it allows you to listen to all the things we have to offer here at YC Radio. So in order to get this app, for you Android listeners out there, you can get it on Google Play, and for all you people with Apple products, you could get it on the App Store. Thank you for listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: Alerta de estafa. Nunca comparta su contraseña de acceso de CUNY ni su MFA. Por favor, recuerde lo siguiente. Nunca comparta sus contraseñas ni sus factores de autenticación multifactor, o MFA, con nadie. El personal de tecnología de la información, entre su campus o de CUNY, nunca se lo solicitará. No responda a una solicitud de MFA si usted no inició el proceso de inicio de sesión. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos en mensajes de texto o correos electrónicos sospechosos o inesperados. Si cree que proporcionó su contraseña o factor de MFA, hizo clic en un enlace sospechoso o abrió un archivo adjunto sospechoso por error, comuníquese con la mesa de ayuda, Help Desk, de su campus para recibir asistencia. Este ha sido un anuncio de alerta de estafa de CUNY.
4: You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.